0: के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

0: शिक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानस उधार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साईरा मुज्तबा। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. Under the revised framework, FPIs investing through the general route will get greater flexibility as certain investment restrictions have been removed. The RBI has also merged the existing general and long-term investment categories into a single limit for government securities and state government securities. The revised framework is aimed at making investments easier and reducing compliance requirements for foreign investors. The revised directions have come into effect immediately. Central Board of Secondary Education or CBSE has extended the last date for submission of applications for verification of marks and re-evaluation till tomorrow. In a social media post, the board said, students can now submit their applications till Sunday midnight. CBSE said that the decision has been taken in the interest of students to provide them with additional time to complete the application process. The earlier deadline for submission of applications was 6th of this month. Delhi police has arrested a hotel cook named Keshav Negi in connection with the Malviya Nagar fire incident. The fire broke out at a hotel in Malviya Nagar on the 3rd of this month and claimed the lives of 21 people while injuring 40 others. Earlier, the police had also arrested the hotel owner under charges of culpable homicide and other relevant sections. The police stated that further interrogation and investigation is underway. The 29th edition of the India-US Army to Army Staff Talks was held in Hawaii, co-chaired by Lieutenant General Rajiv Ghai, Deputy Chief of the Army Staff Strategy and Lieutenant General Joel Vowell, and Deputy Commanding General of the US Army Pacific. The discussions focused on strengthening bilateral defense cooperation, enhancing interoperability, expanding professional exchanges and deepening military collaboration in support of shared security interests. Mauritius has imposed a temporary entry ban on foreign nationals who have travelled to, transited through or stayed in Congo, Uganda or South Sudan over the past 21 days following the latest outbreak of the Ebola virus. Mauritian citizens and foreign residents holding valid work, residence, occupation, business or student permits will still be allowed to enter the country, but will be subject to a mandatory 21-day quarantine if they have visited any of the 3 countries within the previous 3 weeks. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today congratulated the newly appointed Foreign Minister.

0: Standard. कारांगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का और मेरा यानी दीपा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना, स्वयं पर विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद द्वारा कहे गए इस विचार का तात्पर्य है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास और उसकी सच्ची पहचान होती है।
1: और जब हम अपने मूल्यों और स्वभाव के प्रति ईमानदार रहते हैं, तब सफलता और संतोष दोनों हमारे जीवन में आते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
0: और प्रतिभा, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, पर सबसे पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने गीत सुना मन गाए वो तराना, फिल्म थी चालाक और गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा देखो, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी की जन्मतिथि है। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में असम प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने प्रगतिशील औद्योगिक और शैक्षिक नीतियां लागू की और गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
0: और असम के राज्यपाल श्री जय राम दास दौलतराम ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था। गोपीनाथ बोरदोलोई जी को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जी को उनकी जन्मतिथि पर सादर नमन। और प्रतिभा, हमने अभी असम की बात करी और आज मैं अपने दोस्तों को कुछ खास बताना चाह रही हूँ मेखला चादर साड़ी के बारे में।
1: अच्छा
0: दोस्तों, आज मैं आपको असम की खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा मेखला चादर के बारे में बताना चाहूंगी। ये केवल एक परिधान नहीं बल्कि असम की संस्कृति, कला और विरासत की पहचान है। सदियों से ये असम की महिलाओं द्वारा त्योहारों, विवाह समारोहों और अन्य विशेष अवसरों पर पहनी जाती रही है।
1: बिल्कुल दीपा, देखो असम का नाम आते ही चाय के बागान, बीहू और मेखला चादर की छवि मन में उभर आती है और इसकी सुंदरता और गरिमा वास्तव में मन मोह लेती है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। और इसकी खास बात ये भी है कि ये सामान्य रूप से साड़ी जो है कुछ अलग होती है। ये दो भागों से मिलकर बनी होती है, नीचे का भाग मेखला और ऊपर

0: जाने वाला भाग सादोर कहलाता है।
1: यानी साड़ी जैसी दिखने के बावजूद इसकी जो अपनी एक अलग पहचान और शैली है, और यही इसकी विशेषता है। और इसको जो महिलाएं पहनती हैं, ये वेशभूषा उनको एक साथ पारंपरिक सौम्य और आकर्षक रूप प्रदान करती है।
0: हाँ, और मेखला सादोर मुख्य रूप से सिल्क जैसे मूंगा, पाट, एरी के साथ साथ कॉटन कपड़ों से भी बनाई जाती है। असम का सुवाल कुची क्षेत्र अपनी उत्कृष्ट रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है।
1: बिल्कुल, और देखो एक परिधान के पीछे इतनी समृद्ध कला और परंपरा जुड़े होना अपने आप में अद्भुत है। और इसकी पहचान भी जो है, वो जो शैली है वो इतनी रोचक है। श्रोताओं, मेखला को कमर पर लपेटकर सुंदर प्लीट्स बनाई जाती हैं, फिर सादोर को ब्लाउज के ऊपर कंधे पर बड़े ही सलीके से ओढ़ा जाता है।
0: और तभी तो ये परिधान अपनी सादगी और शालीनता के लिए विशेष रूप से पसंद किया जाता है। इसलिए मेखला सादोर असम की सांस्कृतिक विरासत, महिलाओं की गरिमा और पारंपरिक शिल्प कला का जीवन प्रतीक है। और प्रतिभा, तुमने थोड़ी देर पहले असम चाय के बागानों की बात की थी, तो क्यों ना अपने दोस्तों को ये प्यारा सा गीत सुनवाएं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी बरसात की एक रात।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: आकाशवाणी हमेशा से ही हमारा साथी रहा है और पिछले कई वर्षों से 90 वर्षों से सतत हमारा साथ निभा रहा है। इसके विकास की यात्रा 90 वर्ष लंबी है।
2: और श्रोताओं, आजादी के समय से ऑल इंडिया रेडियो का नेटवर्क मात्र 6 केंद्रों और 18 ट्रांसमीटरों तक ही सीमित था। वर्तमान में आकाशवाणी 231 केंद्रों, 303 चैनलों और 755 ट्रांसमीटरों के विशाल नेटवर्क के साथ देश का सबसे बड़ा प्रसारक है।
0: ये नेटवर्क आज देश के लगभग 92% भौगोलिक क्षेत्र और 98% से अधिक आबादी तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करता है। विविधता को समेटते हुए आकाशवाणी द्वारा देश की 23 भाषाओं और 189 बोलियों में सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
2: आधुनिक दौर में DTH, न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स OTT जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसकी पहुंच युवाओं तक भी मजबूत हुई है।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी का साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा और आकाशवाणी यूं ही गीत संगीत मनोरंजन स्वास्थ्य जानकारियों को हम तक निरंतर पहुंचाता रहेगा।

0: चिच्चू मेरे सुर में, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म थी चिच्चोर, गायक कलाकार थे हेमलता यशोदास।
1: दीपा देखो, गर्मी की छुट्टियों में घूमने फिरने और अपने प्रियजनों से मिलने का उत्साह हर किसी में दिखाई देता है, है ना?
0: ये तो सही कहा।
1: और ऐसे में भारतीय रेल लाखों यात्रियों की पहली पसंद बन जाती है।
0: बिल्कुल प्रतिभा। और अब यात्रा को और आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे का रेल वन सुपर ऐप यात्रियों के लिए एक ही स्थान पर टिकट, PNR स्टेटस, ट्रेन की लाइव जानकारी, कोच पोजीशन, भोजन ऑर्डर और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
1: बिल्कुल, यानी कि यात्रा से जुड़ी लगभग सभी सेवाएं एक ही ऐप में मिल जाती हैं और ये देखो कितना सुविधाजनक भी है ना?
0: बिल्कुल प्रतिभा। और इसके साथ ही इसमें रेल मदद सुविधा भी शामिल है। यदि यात्रा के दौरान सफाई, पानी, सीट, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता या किसी अन्य समस्या का सामना हो तो यात्री तुरंत शिकायत दर्ज करके उसकी प्रगति भी देख सकते हैं। रेल मदद की ऑनलाइन सेवा www.railmadad.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: और दोस्तों, यदि किसी का सामान ट्रेन में छूट जाए तो ऐसी स्थिति में रेल मदद या रेलवे हेल्पलाइन 139 के माध्यम से सूचना दी जा सकती है। और साथ ही रेलवे का ऑपरेशन अमानत अभियान भी यात्रियों के छूटे सामान को उनके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाने का प्रयास करता है।
0: और ये जानकारी निश्चित रूप से यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी है प्रतिभा। और लेकिन लंबी यात्रा में मनोरंजन भी तो जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना? हाँ। तो रेल वन ऐप में प्रसार भारती का ओवर द टॉप OTT डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से यात्री यात्रा के दौरान रेडियो, TV चैनल, समाचार और मनोरंजन कार्यक्रमों का भी आनंद ले सकते हैं।
1: यानी रेल वन केवल यात्रा की जानकारी ही नहीं बल्कि सफर को और भी आनंददायक बनाने में मदद करता है, है ना?
0: बिल्कुल,
1: और देखो,
0: बिल्कुल।
1: जो रेल वन ऐप है उसको हम अपने मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। और सही जानकारी और सेवाओं के लिए हमेशा हम श्रोताओं से यही कहेंगे कि भारतीय रेलवे की आधिकारिक जो साइट है, जो प्लेटफॉर्म है, उसी का ही उपयोग करें।
0: ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई।

प्रतिभा। तो साथियों, अगली रेल यात्रा से पहले अपने मोबाइल में रेल वन सुपर ऐप अवश्य डाउनलोड करें और रेल वन तथा रेल मदद की सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुरक्षित, सुविधाजनक और आनंददायक बनाएं।

0: और श्रोताओं, अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी दोस्त और आवाज थी किशोर कुमार की।
1: दोस्तों, हमारा घर आंगन कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपने विचार, प्रतिक्रियाएं, सुझाव हमें अवश्य लिखें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है, आप नोट कर लें, fmgoldga@gmail.com।
0: जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। दीपा, देखो, योग जीवन जीने की कला है और योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, जो हमें सिखाता है तन मन और आत्मा से जुड़ना, यानी ऐसी चीज के साथ जुड़ना जिसे आप जानना चाहते हैं। उसके लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ योग सिखाता है।
1: और योग दोस्तों हमें ये भी सिखाता है कि हर काम को एकाग्रता, निष्ठा और पूर्ण समर्पण से किया जाए, ताकि हर प्रयास सार्थक बने और जीवन में संतुलन और सफलता आए।
0: योग शारीरिक व्यायाम या ध्यान का माध्यम ही नहीं, बल्कि कर्मों में कुशलता लाने का साधन भी है, यानी योगः कर्मसु कौशलम्।
1: जब व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों तथा अपनी ज्ञानेंद्रियों को साथ लेता है, वही असली योग कहलाता है, यानी सफलता असफलता, लाभ हानि, सुख दुख में जब व्यक्ति मन को स्थिर रखना और सम रखना सीख जाता है, तो वो सच्ची योग साधना होती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा दीपा आपने। देखो, योग केवल आसन या प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं और आप काम को कैसे कर रहे हैं, उस काम की कुछ

भी यौगिक क्रिया है। तो योग धारणा के द्वारा हम अपनी जीवन को सफल बना सकते हैं, जो योग द्वारा ही हम सभी जानते हैं संभव है, क्योंकि आजकल योग हम सभी करते हैं और क्योंकि योग विचार कर्म ध्यान की सिद्धि का मार्ग है। क्यों प्रतिभा, मैंने सही कहा ना? तो क्यों ना योग को अपनाकर जीवन को एक नई दिशा दी जाए।

0: हमको मन की शक्ति देना, ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी कुट्टी और गायिका थी वाणी जयराम।
1: और देखो दीपा, प्राकृतिक संसाधन हमेशा से मानव सभ्यता

0: कल्याण करते आए हैं, लेकिन विकास के क्रम में हम इन संसाधनों को कहीं भूल रहे थे, क्यों है ना।
1: हाँ।
0: और आज तकनीक और विज्ञान ने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को पहचान कर उन्हें एक नया और कारगर नजरिया दिया है और इन संसाधनों का उपयोग कर रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश भी की है।
1: बिल्कुल प्रतिभा, और जिसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल विशेष है। आज सौर ऊर्जा बिजली आपूर्ति का बेहतर विकल्प है, साथ ही साथ सौर ऊर्जा पूर्ण रूप से प्राकृतिक भी है, तो क्यों ना हम आज बात करें सोलर इन्वर्टर की।
0: बिल्कुल, तो सबसे पहले जानते हैं कि सोलर इन्वर्टर क्या होता है। श्रोताओं, सोलर इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो सोलर पैनल से प्राप्त डीसी यानी डायरेक्ट करंट को एसी यानी अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करता है।
1: और अल्टरनेटिव करंट का उपयोग घरों, कार्यालयों और उद्योगों में किया जाता है। और अगर आप अपने घरों में सोलर पैनल लगवाते हैं तो इन्वर्टर के बिना सोलर पैनल से प्राप्त ऊर्जा आपके उपकरणों को चलाने में सक्षम नहीं होगी, यानी सोलर पैनल के साथ सोलर इन्वर्टर का होना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और सोलर इन्वर्टर सौर ऊर्जा को रोजमर्रा की जरूरत के लिए उपयोगी भी बनाता है। आज मार्केट में सोलर इन्वर्टर के कई प्रकार उपलब्ध हैं। आप अपनी जरूरत और इनकी कार्य क्षमता के अनुसार सोलर इन्वर्टर का चुनाव कर सकते हैं।
1: और अब बात सोलर इन्वर्टर के फायदों की भी करें। इससे बिजली बिल में कमी होती है क्योंकि दिन के समय सीधे सोलर पैनल से आपके घर के उपकरण चलते हैं। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बैटरी को धीरे धीरे और बेहतर तरीके से चार्ज करता है, जिससे बैटरी की लाइफ काफी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा। और देखो दीपा, अगर सोलर इन्वर्टर ग्रिड टाई या हाइब्रिड मोड के हैं तो पैनल द्वारा बनाई गई अतिरिक्त बिजली को नेट मीटर के जरिए ग्रिड में भेज सकते हैं, जिससे बिजली बिल और भी ज्यादा कम हो जाता है।
1: और दोस्तों, सबसे खास बात ये है कि सौर ऊर्जा उपयोग करने से कार्बन का उत्सर्जन कम होता है और आप पर्यावरण को हरा भरा रखने में योगदान दे सकते हैं।
0: इसमें जो बैटरी सोलर और ग्रिड के बीच तालमेल बिठाने के लिए काफी उन्नत तकनीक होती है और धूप कम होने पर भी ये अपने आप ग्रिड या बैटरी से पावर ले लेता है, जिससे हमें बिजली की निर्बाध आपूर्ति मिलती है। तो देखा प्राकृतिक ऊर्जा कितने काम की है।
1: बहुत काम की है। और इतने सारे फायदे जानने के बाद प्रतिभा, मुझे लग रहा है कि सोलर इन्वर्टर लगवाने का प्लान करना चाहिए।
0: बिल्कुल।

0: अभी तो जी ले। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार और आशा भोसले की।
1: रेबा, देखा जाए तो आजकल मौसम भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। कभी धूप, कभी उमस, कभी आंधी तूफान और कभी बारिश, जो मौसम को और सुहावना बना देते हैं।
0: बिल्कुल दीपा, इसलिए आज हम लेकर आए हैं एकदम कूल, हेल्दी और रिफ्रेशिंग समर ड्रिंक, जिसका नाम है कैरी कोकोनट पन्ना। कच्चे आम की खटास और नारियल की मिठास, है ना, क्या बात है ना
1: क्या बात है। और इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए जो सामग्री, मैं आपको बताना चाहूंगी, कच्ची कैरी लगभग 200 ग्राम कटी हुई, आधा मध्यम आकार का नारियल कटा हुआ, आधा इंच अदरक, एक छोटी हरी मिर्च, 7 से 8 करी पत्ते, 1/4 कप धनिया कटा हुआ, 5 से 6 कप पानी, स्वादानुसार नमक या काला नमक और स्वादानुसार गुड़ या चीनी।
0: तो अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले कैरी को पानी के साथ कुकर में 3-4 सीटी लगाकर उबाल लें और ठंडा होने पर इसका पल्प निकाल लें और जो उबला हुआ पानी है उसे भी संभाल कर रखें।
1: बिल्कुल ये सही बताया प्रतिभा। और अब कैरी के पल्प को 1 कप पानी, नारियल, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ते, हरा धनिया और थोड़ा पानी डालकर मिक्सर में ब्लेंड कर लें। ब्लेंड होने के बाद इसे छन्नी से छान लें।
0: और अब जो मिश्रण है इसे छान कर जो निकाल लिया उसमें नमक या काला नमक अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। जो उबला हुआ पानी संभाल कर रखा था उसे भी आवश्यकता अनुसार इसमें मिला लें। अब इसमें गुड़ या चीनी मिला दें। अगर आपको तुरंत ठंडा ठंडा सर्व करना है तो इसमें आप क्रश आइस भी डाल सकते हैं।
1: और अगर छानने के बाद दोस्तों नारियल के छोटे छोटे टुकड़े रह जाएं तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। वही बीच बीच में कूल ड्रिंक को हल्का सा क्रंची टेस्ट देंगे जो इसका मजा और भी बढ़ा देता है।
0: और अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा गाढ़ा या पतला भी किया जा सकता है।
1: अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, फिर ठंडे ठंडे गिलास में सर्व करें।
0: तो दोस्तों इस गर्मी आप भी घर पर बनाइए कैरी कोकोनट पन्ना और अपने परिवार के साथ लीजिए इसका भरपूर आनंद।

0: बाबू ले लो नारियल पानी, ये फिल्म अपना देश से आपने भी सुना, गायिका थी लता मंगेशकर।
1: और दीपा जी देखिए, हम सभी जानते हैं और मान भी रहे हैं कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना बड़ा खतरा है, तो क्या प्लास्टिक मुक्त जीवन जीना संभव है? शायद इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रतिभा। सोचिए हम रोजाना कितनी प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, पॉलिथिन बैग, पानी की बोतलें, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल कूप और प्लेटें। उपयोग के बाद इनमें से अधिकांश कूड़े के ढेर नालियों, नदियों और समुद्र तक पहुंच जाती हैं, जहां नष्ट नहीं होती।
1: बिल्कुल, एक सकारात्मक और दृढ़ कोशिश से मतलब बदलाव लाए जा सकते हैं। तो जब आप घर से बाहर निकले तो सूती या जूट के जो है थैले लेकर निकले। पानी के लिए आप प्लास्टिक की बोतल के बदले में स्टील की बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर भी होंगे। और साथ ही साथ दीपा देखो, रसोई में प्लास्टिक के डिब्बे हटाकर कांच या स्टील के डिब्बों का उपयोग भी किया जा सकता है। और सबसे जरूरी कि जब हम बाहर से खाना मंगाते हैं तो नो कटलरी नो प्लास्टिक प्लेट्स का विकल्प चुन सकते हैं।
0: और आज जगह जगह ऐसे स्टोर स्थापित किए जा सकते हैं जहां आप शैम्पूज, बॉडी वॉश, किचन क्लीनर, दालें आदि को रिफिल करवा सकें, जिससे बहुत हद तक प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके।
1: और दीपा देखो, अपने श्रोताओं को बता दें कि इस दिशा में मदर डेयरी द्वारा एक सकारात्मक पहल की गई है। कंपनी ने कहा है कि अब वह दूध की पैकिंग पॉली पाउच के बजाय नेचुरली डिग्रेडेबल पाउच में करेंगे।
0: कंपनी ने यह भी कहा है कि इस पाउच से दूध निकलने के बाद यदि इसे फेंक दिया जाए तो 2 से 3 साल में ये खुद गलकर मिट्टी में मिल जाएगा। श्रोताओं आपको ये बता दें कि 5 जून 2026 से दिल्ली NCR में पर्यावरण के प्रति सुरक्षित पॉली पाउच में दूध की पैकिंग की शुरुआत हो चुकी है।
1: बिल्कुल, देखो श्रोताओं, प्लास्टिक मुक्त जीवन का अर्थ केवल प्लास्टिक का विरोध करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ इनका उपयोग करना और जहां तक संभव हो इसको बेहतर बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। छोटे छोटे बदलाव और हम अपने खुद में कुछ परिवर्तन ला के अपने पर्यावरण को और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं।

0: जो बन गए मोती, इस फिल्म से आप गीत सुन रहे हैं, आवाज है मुकेश की। और दीपा देखो घड़ी ने इशारा कर दिया है चलने का, तो हम अपने श्रोताओं से लेते हैं अनुमति। तो मुझे यानी प्रतिभा को
1: और मुझे यानी दीपा भूषण को दे अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना

अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमरीकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Lakshadweep. The weather agency predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Delhi NCR, East Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand and Jammu and Kashmir today. And in hockey, India will face host Japan in the final of the Men's Under-18 Asia Cup 2026 in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं. वक्त है कार्यक्रम एक ही सुन से का. कार्यक्रम एक ही सुन से लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बातें करेंगे उस फिल्म का नाम हम आपको आगे जरूर बताएंगे. फिलहाल आप ये गीत सुनकर गेस कीजिए कि आखिर ये फिल्म है कौन सी.

श्रोताओं, आप सबके मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। आप सबने बिल्कुल सही गेस किया है। तो इस फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम। जी हाँ, साहिब बीबी और गुलाम 1962 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की एक बेहद प्रतिष्ठित और सदाबहार क्लासिकल हिंदी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अबरार अलवी ने किया है और निर्माण एवं सह निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। इसके साथ साथ गुरुदत्त ने इस फिल्म में अभिनय भी किया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार मीना कुमारी छोटी बहू के रूप में है, गुरुदत्त भूतनाथ के रूप में है, रहमान छोटे बाबू के रूप में है और वहीदा रहमान जवा के किरदार में शामिल हैं।

श्रोताओं, ये फिल्म साहेब बीबी और गुलाम बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई और इसे गुरुदत्त के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल के सामंतवाद और जमींदारों के पतन को दर्शाती है। ये फिल्म बिमल मिश्रा के मशहूर बंगाली उपन्यास साहेब बीबी गुलाम पर आधारित है। श्रोताओं, आपको बता दें, ये फिल्म 29 जुलाई 1962 में रिलीज हुई। हालांकि ये व्यावसायिक रूप से उतनी ज्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म ने कुल 84 लाख की कमाई की, फिर भी समीक्षकों ने इसकी सराहना की। कलाकारों के अभिनय, विशेष रूप से मीना कुमारी के अभिनय और वी के मूर्ति के छायांकन की सबसे अधिक प्रशंसा हुई।

श्रोताओं, साहिब बीबी और गुलाम फिल्म का संगीत हेमंत कुमार ने दिया था और गीत शकील बदायूनी ने लिखे थे। फिल्म के कुछ बेहद लोकप्रिय गाने आज भी चाव से सुने जाते हैं। श्रोताओं, इस फिल्म ने कुल 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, अबरार अलवी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, मीना कुमारी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और वी के मूर्ति को सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार मिला।

श्रोताओं, बात करें इस फिल्म की कहानी की तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक सीधा साधा युवक भूतनाथ काम की तलाश में कलकत्ता आता है और एक बड़ी हवेली में रहने लगता है। वह छोटी बाबू और की खूबसूरत लेकिन बेहद अकेली पत्नी छोटी बहू के संपर्क में आता है। छोटे बाबू को शराब पीने और वेश्याओं के कोठे पर जाने की लत होती है, जिससे परेशान होकर छोटी बहू उन्हें घर पर रोकने की हर संभव कोशिश करती है। अपने पति का प्यार पाने और उन्हें रोकने के लिए छोटी बहू भी शराब पीना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इसकी आदी हो जाती है। भूतनाथ और छोटी बहू के बीच एक पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता पनपता है, जहां भूतनाथ उसका शुभचिंतक या फिर यूं कहें गुलाब बन जाता है। अंततः यह कहानी इस पूरे परिवार और साम्राज्य के दुखद अंत की ओर लिए चलती है।

श्रोताओं, फिल्म कागज के फूल के बाद गुरुदत्त ने यह फैसला लिया था कि वो कभी किसी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे, और यही वजह थी कि साहेब बेबी और गुलाम फिल्म के निर्देशक उनके लेखक दोस्त अबरार अलवी ने किया था। साथ ही वहीदा रहमान इस फिल्म में मीना कुमारी का किरदार यानी छोटी बहू की भूमिका निभाना चाहती थी, पर उनकी कम उम्र को देखते हुए गुरुदत्त ने मना कर दिया था। श्रोताओं, फिर वहीदा रहमान ने अबरार अलवी से कहकर अपने लिए इस फिल्म में रोल लिखवाया और फिल्म का हिस्सा बनी।

इस अंतिम गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम। श्रोताओं, आशा करती हूँ आपको फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ पसंद आई होगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना कि भारत आलमी आर्थिक अनिश्चितता के समय विच दुनिया की सब तो तेजी नाल वध रही प्रमुख आर्थिकता वचों उभरे है। भारत ते नेपाल के विदेश मंत्री अज शाम नवी दिल्ली विच व्यापार निवेश संपर्क ते ऊर्जा समेत मुख खेत्रां विच सहयोग वधाउण लई आपसी हितां दे मामलियां ते चर्चा करनगे। पंजाब विच इक सड़क हादसे विच घट्टो घट्ट 9 लोकां दी मौत ते 22 होर जख्मी। मॉरीशस ने ईबोला वायरस के फैलन के प्रतिक्रम वजो पिछले 21 दिनों में कोंगो युगांडा और दक्षिणी सुडान की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के दाखिले से अस्थायी पाबंदी ला दी है। तो औरतों की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश नाल। हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अजिहे समय विच दुनिया की सब तो तेजी नाल बढ़ रही प्रमुख आर्थिकता वजो उभर रहा है। तो बहुत सारे देश आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। माली साल 2025-26 7.7% की रजिस्टर्ड GDP विकास दर का हवाला देंदे हुए श्री सिंह ने कहा कि यह प्राप्ति पिछले 12 साल विच बनी भारतीय आर्थिकता के लचकीलेपन ते इसकी ताकत नूं दर्शाउंदी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई हेठ भारत ने आर्थिक विकास में स्थिरता विश्वास और भरोसेयोग्यता नाल जोड़िया है। रक्षा मंत्री ने अगे कहा कि राष्ट्र निर्माण नवीनता बुनियादी ढांचे और उत्तमता से ध्यान केंद्रित करने लिए श्री मोदी की अटुट वचनबद्धता से आलमी चुनौतियों विचों देश को अगे वधाउण दी उन्हां दी योगता ने भारत लई एक भरोसेमंद लचकीला विश्व पद्धर से सन्मानित आर्थिक शक्ति वाले देश विच बदल दिता है। उन्होंने भी कहा कि शानदार विकास राही नवे मौके पैदा होना और 140 करोड़ भारतीय दियां उम्मीदों को मजबूत करना जारी है। पहला कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय आर्थिकता की नींह बेहद मजबूत है ते आलमी आर्थिक संकट के बावजूद देश ने माली साल 2025-26 7.7% की मजबूत विकास दर दर्ज की है। कल शाम दमन विच करीब 2,970 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्टा की शुरुआत करने तो बाद एक वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन करदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया दियां सब तो तेजी नाल बढ़ रहियां आर्थिकतावां विचों एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अज शाम नवी दिल्ली विच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल नाल गलबात करनगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग दौरान दोवें धिरां व्यापार निवेश संपर्क ऊर्जा से लोगों से लोगों के संबंधों समेत मुख खेत्रां विच सहयोग वधाउण दे उद्देश नाल आपसी हित के मामलों से चर्चा करनगे। इस दौरान विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल विचकार विशेष भाईवाली नूं होर मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि दोवें देश विकास सहयोग लोगों से लोगों के संबंध व्यापार और निवेश समेत आपसी हित के होर खेतरों नूं शामिल करने वाला एक विशाल एजेंडा साझा करते हैं। इस दौरान नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा जो कि भारत के 3 दिना दौरे ते ने कल नवी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल नाल मुलाकात की थी। भारत विच नेपाल के दूतघर मुताबिक दोवां अधिकारियों ने नेपाल भारत दुवल्ले संबंधों नूं होर मजबूत करने के उद्देश नाल वख-वख मुद्दों ते चर्चा की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज स्लोवेनिया के नवे नियुक्त हुए विदेश मंत्री टोन काजर बधाई दी ते रल के काम करने की इच्छा प्रगटाई। 30 साल तो वध समय के तजर्बे वाले साबका सफारती अधिकारी टोन काजर स्लोवेनिया विच प्रधानमंत्री जेनिस जॉनसन की अगुवाई वाली नवी सज्जे पक्षी गठजोड़ सरकार

0: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਧੁਰ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 22 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੇ ਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਂਗੋ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने नंबरों की तस्दीक और पेपर की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक गाड़ी और ट्रक के दरमियान टक्कर के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हुए हैं। IMD ने कल तक केरलम और माहे में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में श्रियास अय्यर को भारतीय टीम T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। वैभव सूर्यवंशी पहली मर्तबा टीम में शामिल हुए हैं। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के जाब्तों को सहल बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीकेकार के तहत आम तौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी, क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्सुकात और रियासती सरकारी तमस्सुकात के लिए एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीक़ेकार का मकसद सरमायाकारी को आसान बनाने के साथ साथ गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए लाजमी शराइत में कमी करना है। नजरसानी शुदा हिदायत का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल की वजारत खारजा ने कहा है कि मीटिंग के दौरान फरीकैन बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे, ताकि दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान राबतों, तवानाई, सरमायाकारी और तिजारत समेत दीगर अहम शोबों में तआवुन को बढ़ाया जा सके। जनाब शिशिर खनाल इन दिनों भारत के 3 रोजा दौरे पर हैं। अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके इस दौरे से भारत और नेपाल के दरमियान खसूसी शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ बातचीत के लिए भारत के पास तिजारत, सरमायाकारी, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राबतों, तआवुन और तरक्यात समेत एक तवील एजेंडा है। इसी दौरान नेपाल के वजीर खारजा खनाल कल नई दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत में नेपाल के सिफारतखाने के मुताबिक दोनों ने भारत और नेपाल के बाहमी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम करने की गर्ज से मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर में आग लगने के हादसे के सिलसिले में केशव नेगी नाम के होटल के एक बावर्ची को गिरफ्तार किया है। इस माह की 3 तारीख को मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया था और इसमें 21 लोगों की जान चली गई थी, जबकि दीगर 40 जख्मी हो गए थे। इससे कबल पुलिस ने गैर इरादतन कत्ल और दीगर मुतालिका दफात के तहत होटल के मालिक को भी हिरासत में लिया था। पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में मजीद पूछताछ और तहकीकात जारी है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने नंबरों की तस्दीक और इम्तिहानात के पेपर फिर से जांचे जाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में कल तक तौसी की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर बोर्ड ने कहा कि तलबा अब इतवार की आधी रात तक अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। CBSE ने कहा है कि ये फैसला दरख्वास्त दाखिल करने के अमल को मुकम्मल करने की खातिर तलबा को इजाफी वक्त फराहम करने के लिए किया गया है। इससे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। RBI ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों

0: देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास की एक नई युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 3 न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा।

0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: इंटरस प्रोग्राम नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 इकन मीडियम वेविका द्वारा आकाशवाणी करगिल इन वक्स पो

की खिदमत में अदावर्स, ये आकाशवाणी है। उर्दू सर्विस की आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। हमारी नशरियात मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और

से ये लोक गीत आपको सुनाएंगे और शाम 4 बजे फिल्मी नामों का सफर शुरू होगा।

0: निहाल बेगम बल्तिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने के पड़ोसी मुल्क के मंसूबों पर पाकिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। वहां कल ये इंतखाबात होना है। भारत ने अपना ये जाना माना मौकफ दोहराया है कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है वो भारत का अटूट हिस्सा है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, जो 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत के साथ मुकम्मल और कानूनी और नाकाबले तस्खीर खाक का नतीजा है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाकर अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है और उसे चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखे। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान की बार बार की रट लगाने और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदल सकते कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा था, है और रहेगा, जिसे भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। जनाब पी हरीश जनरल असेंबली में पेश की गई कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर बहस के दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके के बारे में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की तरफ से जिक्र किए जाने का जवाब दे रहे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उन्हें फिलहाल ऐसी किसी मीटिंग का कोई फायदा नजर नहीं आता। पुतिन ने यह तबसरा गुज़श्ता रोज सेनेट सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के अहम इक्तसादी फोरम के दौरान किया, जो जेलेंस्की के उस खुले खत के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने बिलमुशाफा मुलाकात की अपील की थी ताकि दोनों लीडरान जंग के खात्मे के लिए बातचीत कर सकें। सदर पुतिन ने कहा कि जेलेंस्की के खत का कुछ हिस्सा गुस्ताखाना था और उन्हें उसमें खुलूस नजर नहीं आया। जेलेंस्की ने बाद में जवाब देते हुए कहा कि उनकी तजवीज को पुतिन की जानिब से मुस्तरद किया जाना यह जाहिर करता है कि क्रेमलिन जंग खत्म करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवें तर्स के जमजू तैयारे सिखोई SU-57 की पेशकश की है और भारत में इसे मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज भी रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्रिकेट मैचों की 16 रुकनी T20 टीम का ऐलान किया है। श्रेयस अय्यर को T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया है। इससे पहले सूर्य कुमार यादव कप्तान थे। तिलक वर्मा के टीम के नायब कप्तान होंगे। नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को पहली मर्तबा T20 टीम में शामिल किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। भारत ने पाकिस्तान की इस बात के लिए मजम्मत की है कि वह अक्वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में अपनी रुकनियत का बेजा इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैला रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत की पेशकश मुस्तरद कर दी है और श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। सूर्यवंशी को पहली बार भारत की क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शुरुआत निशा पेश प्रोग्राम मेरी पसंद। ऐसे में इस प्रोग्राम के तहत फिल्मी नगमे समाप्त करते हैं।

0: वो तो
1: क्यूट है ना?
0: अरे पहलवान है।
1: और तुमसे प्यार करती है?
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए?
0: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है?
0: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी श्याम।

go.

Christ.

कैसी है, तूने मुझको बताया।

मजामी नमों के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है हिमाचली लोग।

हिमाचली लोकगीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। ले सभी न पेश है फिल्मी नगमे। तमाम समय की खिदमत में अब्दुल्ला की जानब से पुरखलूस आदाब।

फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आपने सुना, आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। अय्यब यादव की भारत फिल्म का ये तो है ना, लता आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में।

Sono rete.

जोकर इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। आइए अब किशोर कुमार को सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

चल रहे थे फिल्म थी सरगम।

NCID 909. इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़।

0: साथ फिल्मी नगमों का ये सफर अब यहीं खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। 4:50 हो जाते हैं सामने, अब नशर खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमायाकारी में इजाफे की खातिर सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जाब्तों को सहल बनाया है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरख्वास्तें देने की तारीख कल तक बढ़ा दी है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने तारीख रकम की है। वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय T20 बैन अलाक्वामी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया गया है। पहली बार वैभव सूर्यवंशी को भारत की क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। अब खबरें तफसील से। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के जाब्तों को सही बनाया है। नए सिरे से तैयार किए गए तरीकेकार के तहत आमतौर पर FPI सरमायाकारी करने वालों को ज्यादा सहूलत होगी, क्योंकि सरमायाकारी से मुतालिक बाज पाबंदियों को हटा लिया गया है। RBI ने मौजूदा जनरल और तवील मुद्दती सरमायाकारी से मुतालिक जुमरों को सरकारी तमस्सुकात और रियासती तमस्सुकात के लिए एक वाहिद हद के तौर पर भी जम कर दिया है। इस नजरसानी शुदा तरीकेकार

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ब्रेस्ट कैंसर जो है, जैसे हर कोई जानता है कैंसर के बारे में, कैंसर में क्या होता है कि इस ब्रेस्ट में भी यही कैंसर है किसी भी उम्र में। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए किसी भी कोई लेडीज होगा तो उसमें ब्रेस्ट में जैसे ना एक ये बन जाता है, लम्ब बोलते हैं हम इसको, मांस बोलते हैं, वो बन जाता है। तो वो एक अलामत है कि हो सकता है आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस है। तो उसमें आपको जब भी ऐसा कुछ ब्रेस्ट में या एक सिंगल ब्रेस्ट में या किसी किसी को दोनों में भी अगर ब्रेस्ट में ऐसे अगर लम्ब हो या मांस हो या अगर ऐसा कुछ है तो आपको शक होता है तो आपको आपके डॉक्टर्स के पास इलाज कराना है, उसके पास पहले चेकअप कराना है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है कि जब भी आपके ब्रेस्ट में एक जाती है मांस एक बन जाती है या इसको हम गिल्टियां बोलते हैं वो बन जाती है, तो ये एक अलामत होता है। और साथ में क्या होता है कि बहुत टाइम से एक ब्रेस्ट में एक अल्सर जैसे ना कोई जैसे रेश होता है हम उसको बोलते हैं, जैसे कोई जख्म जैसा कोई बन जाता है, वो बहुत टाइम से हील नहीं हो जाता है ब्रेस्ट में। तो किसी किसी को क्या होता है कि वो निप्पल जो होता है ना, निप्पल से कभी कभार जैसे क्लियर डिस्चार्ज या ब्लड इसमें से डिस्चार्ज आने लगता है बहुत टाइम से। चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट में जो लम्ब बनते हैं या हमारे अगर जुबान में बोला जाए तो कोई जैसे कि आपके पिपिया निकछाना का तो स्क्रांसखंड छिकछाना का तो या दो टाइम खचिक

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर

0: पश्चिमी एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long

0: आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। इसीलिए डर खौफ ना करें। पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम पर आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें।
3: हेलो मम्मा।
1: हाय।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: समझना, फ्रंट सा मथुक हल्का सा थुक दे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हल्का सा थुक, हल्का से कम से कम 2-3 इंच देखो नौ छा से ना देखा ना कोई तोका दोंचिन पटा बोल दो मना ये नौ से संडे से अनुख छे
1: कसा कसा
0: को तोका दोंचिन
1: बिल्कुल तंग तंग पटक में पी दे चामल छुक सुंग तेज बार पा
0: बिल्कुल
1: चामल छुक से ना दे तना ये खुला ब्रो
0: खुला जो दे दे ना पटक यंग पटक तांचिन
1: दे बिन छिन हाजु
0: पटक पता एक दे टाइम खुद संडे सा बचे हल्का सा खुद प्रहर बचे
1: बख्शीश कसा
0: दो फर जनाज ना दे नो देखा ना जिमो से ता हल्का बो
1: कसा
0: देखा ना तो बिल्कुल लूज मिह जावा से को टेट बचा जिया ना तो चाम से लंबा ता मैसा पैरा जना को लूज स्कूल चिन जिया लूज स्कूल भी मतलब पे नवल ते प्लांटेशन पैरा जना कमर्शियल चिन
1: कसे बख्शीश
0: ता दारे गति प्लांट पु गाचे दारे हॉर्टिकल्चर जना चिन प्लांट नंबर सिटी के मोजो मना गति तुन से सिकी सिकी कल भी के मोजो दो गोलो मत लूज मना
1: स्कूल में
0: स्कूल में खुल जा स्कूल में सब पैरा गुल में सब नवल ते को फटक पता जावे टेक्निकल पिछले एक दो साल मैं खो खतरा जरा की फूल केयर पोषण खो घोड़ाई अंबार घोषण खो लू तंग मार घोषण खो टेम टेम देना छू तंग मोशिन 2-3 साल खो चलो थोड़ा बहुत अपना सेलेगा दो खुरा किया पहले इन फर्स्ट साल पर मैंने सोमवार को मैंने खोई दून सा टीएजी साइड ला मैक्सिमम मेरा जना को युवा की मगोर नजी का
1: कैसे कैसे छुले बगोर
0: छुले बगोर नु ये युवा दयन की मेरा मेहरबानी के अंदर दो टाइम का छुदा सिख मना कम से कम ए युवा फिन जल दुशुत बाबा एक एक छु दो छु तो जाते मना को तम जो सर को मतलब को पूजा कर ताड़ी सीन सर बिल्कुल सर
1: बख्शी जो खान साहब इसमें तकसीम उल यूनिट की अतंग सकियत पन ला खासकर प्लांटेशन का या चुक पे इल जो ना तरीका यरिस मोल जो चुक सिर गया अपना अते छिबा से खोस तालुक्स बचा जिन दो यरिस मोल यूनिट पिन या दुमिन मा अति प्लांटेशन इन दौरान या नुक नतिस का चुक स्पेरे रिगस ना जा पर को छजन खास का दरे सीधी दौर पेंडो गता दि प्लान इन अहमियत पो खास कर लो बलो गता बाड़ी छने दरे अति सिबक थान जो अति गस करगिल अनोर गला जोस्ते का चुक नि ओरिएंटल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन चोक्स ना अति सकियत पे मेमा सुंदा चुक पी तरीका नल जोक्स ने तिल साबिन यो तिंजु और दी फंतोक्स पु चाम से गता दुनि कना फंतोक्स जो दिशस पु गता सहयत पन ला युंकी मना खिमिति गता बिंग मथोन यो तिन स्पेरा

0: जानकारी के लिए। तो इस सिलसिले में एक डिसीजन लिया गया है कि ये लिंक हम ओपन रखेंगे, मंडे शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। अभी और 2 दिन का टाइम हम उनको दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको मंडे से जाना है कॉलेजेस में। मंडे ट्यूजडे हमने उनको रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेंसडे तक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं अपने कॉलेज में। जिसका जहां एडमिशन हुआ है वहां वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएगा और उन डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वहां पर। एडमिशन डेस्क जो कॉलेज का होगा वो उनको उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। इस सिलसिले में कॉलेज अपना एक शेड्यूल भी निकाल सकते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉलेज हैं जहां पर 1000 बच्चे या 1000 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, वो अपना शेड्यूल भी निकाल सकते हैं कि पहले दिन वो कितने बच्चों को एंटरटेन करेंगे, दूसरे दिन कितनों को और तीसरे दिन कितने करेंगे, उसके बाद उनका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा।
1: बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज अखनूर जिले में जारी आउटरीच मुहिम के तहत मुतअद्दिद अहम शख्सियात के साथ मुलाकात की। उन्होंने अशोक कोल को मुख्तलिफ सेक्टरों में दरकार इस्लाहात और दीगर मामलात से रोशनास कराया। दरियासना बीजेपी के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने मुल्क की मईशत से मुतलिक बकौल उनके कांग्रेस के गलत आदादोशुमार के लिए कांग्रेस पार्टी की नुकताचीनी की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वजीर अजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत में मुल्क तेजी से इकतजादी तरक्की हासिल कर रहा है। अब रेल से मुतलिक ये खबर। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन की मोसर कौशों की बदौलत जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 111 टन गिलास को कामयाबी के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचाया गया है। सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर जम्मू उचित सिंघल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से गिलास की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे वादाबंद है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वह गिलास और दीगर जरिए पैदावार की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे सहूलियात का भरपूर फायदा उठाए। द विश्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कल और परसों शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कम्पलेक्स श्रीनगर में 20वें एशियन गेम्स जापान के लिए भारतीय विश्व टीम की सिलेक्शन के लिए ट्रायल्स का इनेकाद कर रही है। इस हवाले से नेशनल चीफ कोच ऑफ इंडिया कुलदीप हंडू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कैंप लगाया सर अहमदाबाद में, तो अभी हमारा सर 20 मई से लेकर 8 जून तक यहाँ पर कैंप चल रहा है सर, नेशनल कोचिंग कैंप। ये सर 23 जून तक चलेगा सर। इन बिटवीन सर हमें इंडियन ओलंपिक की तरफ से डायरेक्शन चाहिए कि फाइनल टीम हमें बाय नेम देनी है सर बिफोर 10th ऑफ जून सर। विश्व एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम ट्रायल करेंगे श्रीनगर में सर 5 से लेकर 8 तक सर। हमारा कल फिटनेस टेस्ट था कश्मीर यूनिवर्सिटी में सर, आज वेइंग था। कल सर हमारा स्पेसिफिक टेस्टों का जो मेन है फाइटिंग का और जिसमें तावलू इवेंट है दोनों, उसमें सर जो स्पेसिफिक देखेंगे सर, टेस्ट करेंगे सर, जो बेस्ट होगा हमने सर 13 खिलाड़ी निकालने हैं सर।
1: और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
3: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। मुनशियात के खिलाफ जारी मुहिम एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका सबूत नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम में भरपूर अवामी शिरकत से मिल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस अज्म का इआदा किया है कि मनुष्यात और नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जारी रखा जाएगा ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखा जा सके। इस मुहिम का नुमाया पहलू वो आदादोशुमार है जो गुजशत 56 दिनों की कार्रवाईयों की अक्कासी करते हैं। इस अरसे में 1036 FIR दर्ज की गयी, 1128 मनुष्यात स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, 100 से जायद जायदादें जब्त की गयी, तकरीबन 700 ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए गए जबकि 130 मनुष्यात स्मगलरों के पासपोर्ट मनसूख करने की सिफारिश की गयी। एक ताज़ा कार्रवाई में श्रीनगर पुलिस ने 3.50 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें मुंसलिक की। ये आदादोशुमार इस बात का सबूत है कि इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम मुश्तरक तौर पर मनुष्यात के चैलेंज से निपटने के लिए सरगर्म अमल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मनुष्यात का मसला महज समाजी या सेहत आमा का मसला नहीं बल्कि कौमी सलामती से भी जुड़ा हुआ मामला है। मनुष्यात स्मगलिंग से हासिल होने वाला सरमाया दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है जिससे नौजवानों का मुस्तकबिल मुतासिर होता है और अमन तरक्की व इस्तेकाम को भी खतरात लाहक होते हैं। इस तनाजुर में नार्को दहशतगर्दी के खिलाफ

जय हिंद। संगीत से भरा हुआ फौजी भाइयों का ये मनपसंद प्रोग्राम लेकर फिर से एक बार आपका दोस्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम प्रोग्राम सुनने वाले दोस्तों और फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम की पहली पेशकश सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज़ों में।

लीजिए फौजी भाइयों, सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में प्यार झुकता नहीं फिल्म से। SH बिहारी के लिखे हुए इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जी भाइयों, अब अपना ये मनपसंद प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। प्रोग्राम अभी जारी है, पहले ये छोटा सा वक्फा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: De repente es program yen en chigut pin yulstrums magmionifia. Midim vevikan jazakash maniker gilikana en tanagravin chut waxpo, habarunit hosonsuk. Kasatakash mani de likana hindi, angrezi, dona, urdin, habarun rilebet, rilevla girbazat.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिक

0: की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 3 न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोल्स ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और

0: हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country.

0: हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीजों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉ पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुताल्लिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमूई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुताल्लिक तरीकाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जाब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुर्दनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रूपये दिए जायेंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम अज कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्दे आप करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉ मांडविया ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाले ममालिक में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है। देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपनी तवील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुत्तसल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में

0: के साथ ही स्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों गोवा तमिलनाडु पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निजाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से यह बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: درسخ پینتس آکاشوانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونا اردین خبر لگن چگت پن میڈیم وی ویکن چز آکاشوانی کرگی لیکن انتا نگر غن چود وقت بو چانی بجا رگون افت سونسوک کساتا پروگرام ین مزات نی فایل
2: السلام علیکم ریڈیو ین کنن میمانسون ین تاسا موزن جو آکاشوانی کرگیلی tonu ni na ton chi chi ka ngati do en ju gi ngati nan ma si feraon ya krim sun stons ma ston ju pa don sax se ya don ju kor cho se ya da sax bele chu ja ju da na ngzom sanga station ni studio no ya ta bar bar la ngati sanga ti nan ma si charma min ni ka phes gi sori glep chu pa ju gaz bas se din ston ni ston ya yan ta ng yong mi tu sina du lam stan chok zare da ngzom se diring ma chi studio kargili minchan yul کنور نا سرما پوجیری کی اسکو تو جو ایران سو محمد حسین دونا حاجی محمد علی کنور نا ابوجی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام یا واسط مہربانی
2: مت سمکا دکس جو مت پرشپچ بی داس پر ایک بیت سن بس ارگال بیت سنیکا
3: شکر
2: دری دی تو سپیکایا